0: Radio Ama Network News and Information Station.
1: Radio Ama Network.
2: Pegham Aman hai.
3: Pyar ki ek duniya lekar.
4: Mohabbat samet kar.
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
6: रेडियो अमन नेटवर्क मन राम

342-98-1857 और बल नंबर दे 0309-5029-246। कब शप पे नुमयाद सताए डबई सुर दे और कार्य स्पिन दे कब शप पे।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

इन जगह तक ट्रेक वापस राजू बेता ससुर के पीछे पीले को सही था तो दिल्ली में तक ट्रेक वाउरी अगेन बाद वापस राजू ता ससुर अपडेट शरीक हूं और अगेन बाद भी ससुर कॉल तरफ से मिस तरफ राजू बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का।

0: तरशो या लक जल बुटे चिव ची पस पर लिखे
1: वाह वाह वाह वाह
0: लक जल वहले बुटे चिव चिपस पर लिखे दास हार जमाप तरशो।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

पर मुस्कुराहटें लाने का रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बडग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का।
2: रेडियो अमन नेटवर्क, रेडियो अमन
3: नेटवर्क, पैगाम अमन है, अमन
4: है, प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बतें समेट कर।
6: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

वो पमास के तरक्यातीत सी मौशी हम हंगाई जायजा हिस्ती शविदा कौम इकतसादी कौंसल इजलास तहत कोलो पर दौरान वजीर अजम शहबाज शरीफ वली दे चिरातुन की बजट हवाले सर सुबोसर दसो हफ्ते न सलाह मशवरा शविदा दे सिलसिले के टोल वजर आला ताउन और मामिनत शुक्रिया दकवा वजीर अजम वली दे चिनन सुबोसरा नोर वसाइल पैदा कोलो और कौमी मईशत मजबूत जड़वलो हवाले सर तफसली मशवरा शविदा विफाक सुबो टीम वर्क पतोगा पाकिस्तान बेहतरीन मफाद के फैसले कड़ी दी वजीर अजम शहबाज शरीफ वली दी ची रोजगार मुके पैदा कवाल बरामदातो के जफा मौशी बेहतराई और पैदावार सलाहियत ज्यातवल हुकूमत और सुबो मुश्तरक जिम्मेदारी दा वजीर अजम जोर वर्कड़ दी ची सना तरक्की सरब तो फरोख बंदे खसूसी तवज्जो वर्कोनी शी पाक अफगान सरहद बांधे सिक्योरिटी फोर्सेज करवाई शर्त पसंद अनासर हलकड़ी दी द मीडिया रिपोर्टर महा पाक अफगान सरहद बांधे सिक्योरिटी फोर्सेज शपगिश भारत हिमायत कौन की शर्त पसंद अनासर हलकड़ी दी द करवाने बदमने वाक्यातों ने फौरन बात कड़ी शिविर विफकी इतलात वजीर अताउल तारड़ सोशल मीडिया ला रुखपल बयान की वली दी चे 13 रोज मुसदर के फेडरल कांस्टेबलरी चौकी बांधे हमले पर जवाब की दग करवानी कड़ी शिविर रवानी में अस्तित्व के फौजी हमले न बाद शर पसंद अनासिरो नेटवर्क के जिक्री शिविर विफकी इतलात वजीर वली दी चे एंटिल पनियाद बंद शर पसंद अनासिरो टेकी मरकजों और वसले न जुड़ शिविर द करवाने के सलोर अहम हदफुना पर मुकमल तो तबकड़ी शिविर पक्की आईनी अदालत द निगर का अहम फैसला और वली नुहा के निगरान दौर पर दौरान कड़े जस्टिस सूरी जरूरी हुई विफाक की आईनी अदालत दमजा करोड़ कानून खिलाफ कर्ज वली दी अदालत द खैबर पख्तूनख्वा मुलाजिमिन बरतरफा आईन और बुनियादी हकूक इस्तेदा मुस्तरद कर दिया वली दी कचेरी तस्रा की हवा महज दी बुनियाद बांधे बुनियादी हकूक के खिलाफ निशीगर्ज इंतहाबातों पर नतीजे की वजूद की रागली खैबर पख्तून दिल दे द फैसले सरा बरतरफ छवि मुलाजिमिन तरफ न दर छवि टोल अपील रिचकड़ी शिविर अवसियों नजर दनाड़े पहाल अमरीकी फौज ईरान बांधे फिजे हमले कड़ी दी ईरान होम पर जवाब के बहरेन और उर्दन के अमरीकी हदफों ने निशाना जुड़कड़ी दी द अमरीकी सेंट्रल कमांड दवाकड़ी दच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिदयात बांधे ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई मुकम्मल कड़ी छवि दी सेंट काम वाली दी ची दवा हमले अमरीकी पाची हेलीकॉप्टर गोर से बोलो और बैन अलाकामी तजारती जहाजों बांधे ईरान हमलों पर जवाब की कड़ी छवि दी सेंट काम वाली दी ची कार्रवाई की अमरीकी फिजाइया और बहरिया जंगी जहाजों ब्रहा हिस्तदा ईरान फिजाई दिफाई निजाम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रिडार तनसीबात निशाना जुड़ शिवी दी वाले पस्तराने इनकलाब वाली दी चमरी हमलों के सिरे के यो मौसिलाती टावर और दुआ ओ बोटिंग के तबाह शिवी दी पस्तराने इनकलाब दवा करेदा चे बहरेन के अमरीकी पिंजा बहरी बेड़े और उर्दन के अमरीकी अल अजरक एयरबेस निशाना जुड़ शिवी दी द ईरान मीडिया ये रिपोर्ट की वाली शिवी दी चे अल अजरक बेस बांधे सलोर हदफुन पाई के अमरीकी F-35 जंगी जहाज हिंगर और कमांड सेंटर निशाना जुड़ शिवी दी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप द ईरान खिलाफ जंग ऐलान करे वजीर मुज़ाकरात के डेर उस पर दो कीमत उचित हुई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया ला रुख पल बयान के वली दी ची ईरान फौज पर मुकम्मल तौगा तबाह शवे और बर्बाद शवे दी द हवाई डेर अब्रहा बहरिया फिजाइया अमला हम मौजूद न हवाई तब पर मुकम्मल तौगा शिकस्त डोनाल्ड ट्रंप वली दी ची ईरान दासी माहिदो बांधे मुज़ाकरात कबूल की डेर देर कर दी ची द हवाई लपारा बेहतरीन साबित की दिल शो उस पर दो कीमत उचित हुई वली बल खुद ईरान वजीर खारजा अब्बास इराकची वली दी ची जमुंगा ताकतवर वसलवाल फौज यो हमले या धमकी द जवाब और कोलो बगैर न प्रिक दी अब्बास इराकची अमरीकी त सख्त पैगाम और कड़ी दी वली दी ची द शिकस्त बावजूद अमरीका द ईरान अजम इम्तिहान अस्तलो फैसला करीदा वली ईरान वसलवाल फौज यो हमले और धमके जवाब और कोलो बगैर न प्रिक दी अब्बास इराकची दाहम वली दी कचेरे गैर मुल्की फौज महफूज पाति की दल वाड़ी हवादा है तीन ओजी अब्बास इराकची वली दी चे हलीज फारिस तारीख के बहरानी मुदाहलत को उनको नुकसानदेह अंजाम पयोशमेर दस्तनून प्रतदी हिते की मौजूद गैर मुल्की फौज मुसलसल हतरे सर मह कड़े दी अवसुआंद को दलुब खबरुना

लेवनी जलब मिकाउदा का आवाज, लेवनी जलब मिकाउदा का आवाज, इश्क पकार दे हकीकतवी का मजाज, खुद गरज आकल हर जे फैदा गूरी दा खु इश्क दे पतावान हम कवि नाज, लोय खुदाय कस्ता मीन पकिनवा ब्याचा सकुल प मकाओ प हिजाज, औ ए हमदर्द कदमीन जज्ब लाड़ा, नु गुंगे बशी हर सुर औ हर यो साज। सलामुना ने की हिली और एहतरामात और जिनको घग आवाज जैप मठासी शहरिया चार अमन रेडियो बटाग्राम दे और जिम स्तासु कुर्बास्तासु मलगरिस्तासु दोस्तासु खादिम नजीर अहमद खादिम और प्रोग्राम दे रोग सेहत लुए नहमत और जिनको दखपल खालिक मालिक और राजक नदा उम्मीद लरम चितासु बखे।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
0: मोहब्बत समेट कर
3: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
0: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।